दिन करकै कीती रात, खसम विसारहिं ते कम जात। नानक नावै बाज सुनात, राग गुजरी महला चौथा। हर के जान सतगुर सतपुरखा, बिनों करों गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव, मोह कौरा नाम प्रगास।

नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेकारी जी सब तेरे जोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आग बखाना।

जालय हम देखा तै डूबी अलय मान एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक जन की शरण।

पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दोष सब तुम काव, आप हाथ दे।

हम शिकार हैं ताहि हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार दसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सतरन को पलम बढ़ कियो।

कछु भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह सेव। आप अपनी बुद्ध है जेती।

साध संगत गुरमुख साध संगत गुरुद्वारा गुर सिखी दा देखना दर्शन खालसे दा परचा शब्द दा पूजा ज्योत दी।

लज्जा के चले कबीर हर की भगत में राजा गदा हुए राजे खड़ी खड़ाओ निशानी।

जिन सगलो ब्रह्म पछाता रहाउ, संत संग जाका मन शीतल, ओ जाने सगली ठांडी, हम मैं रोग जाका मन व्यापत, ओहो जन्म मरे बिल लाती, ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया, ताको सर्व प्रगासा, अज्ञान अंधेर सूजस नाही, बहुड़ बहुड़ परमाता, सुन बेनंती स्वामी अपने, नानक इहो सुख मांगे, जह कीर्तन तेरा साधु गावे, तह मेरा मन लागे, सोठ महला पंजवा, तन संतन का तन संतन का, मन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम ते आया, सर्व कुशलत

हर कीर्तन रस गाई इहां सुख आगे मुख उजल जन का संग वडभागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूरन जन की केतक उपमा कही है। अगम अगोचर सद अविनाशी सरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ पराधी ओट संतन की आही। बूढ़त मोह ग्रह अंध कूप मह नानक लेहो निवाही। सोठ महला पंजवा कर पहला जा कै हिरदय वसया तू करते ताकि तै आस पुजाई। दास अपने कौ तू विसरह नाही चरण धूर मन पाई। तेरी अकथ कथा कथन ना जाई गुण निदान सुखदाते स्वामी सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी जैसी तुम लिख पाई। सेवक कौ तुम सेवा दीनी दर्शन देख अघाई। सर्व निरंतर तुम्हें सुमाने जाको तुदे आप बुझाई। गुर प्रसाद मिटियो अज्ञान प्रगट भये सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई त्यानी सोई पुरख सुपहाई। कहो नानक जिस भये दयाला ता को मन ते बिसर ना जाई। सोट महला पंजवा सगल समग्री मोहे।

साध सरन छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे, फिर आवत बारो बारा रहाओ। ओहो जो परम पलावा कहियत, तिन मह उर्जियो सगल संसारा। पूर्ण भगत पुरख स्वामी का, सर्ब थोक ते न्यारा। निंदो नाही काहू बात, एहो खसम का किया। जाको कृपा करी प्रभ मेरे, मिल साध संगत नाउ लिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, सब ना करत उदारा। कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया, एहो पूरन तत बीचारा। सोठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बीचारेउ। राम नाम तत सारा, किल बिख काटे निमख अराध्या। गुरमुख पार उतारा, हर रस पीवहो पुरख ज्ञानी। सुन सुन महा तृप्त मन पावे, साधु अमृत बाणी रहाओ। मुकत भुगत जुगत सच पाईए, सर्ब सुखा का दाता। अपने दास को भगत दान देवे, पूर्ण पुरख विधाता। सरवणी सुनिए रसना गाईए, हृदय त्याईए सोई। करण कारण समरथ स्वामी, जाते बिरथा ना कोई। वड्डे भाग रतन जन्म पाया, करहो कृपा कृपाला। साध संग नानक गुण गावे, सिमरै सदा गोपाला। सोठ महला पंजवा, कर इशनान सिमर प्रभ अपना। मन तन भय अरोगा, कोट बिघन लाथे प्रभ सरना। प्रगटे भले संजोगा, प्रभ बाणी शब्द सुभाखिया। गावहो सुनहो पढ़हो नित भाई, गुरपूरै तू राखिया रहाओ। साचा साहिब अमित वडाई, भगत वच्छल दयाला। संतां की पैज रखदा आया, आद बिरद प्रतपाला। हरे अमृत नाम भोजन नित पुंचो, सर्ब वेला मुख पावो। जरा मरा ताप सब नाठा,

प्रगट पई सगले जोग अंतर गुरु नानक की वडियाई चौथ महला पंजवा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जाती हर दर्शन देहो दे।

आप मलोवा मल मल धोवा एहो मन तै कूदेसा सुन मीता हौ तेरी सरनाई आया प्रभ मिलो देहो उपदेसा मान ना कीजै सरन परीजै करै सो भला मनाइयै सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै इयो दर्शन हर जियो पाइयै भयो अनग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा सारी सब अकुल निरंजन दीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जिया

नानक सह फकरी संतन की हृदय भय मगन चर नारा सूरठ महला पंजवा राजन मह राजा उरझायु मानन मह अभमानी लोभन मह लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को यही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पाव है जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है जैसी भूख तैसी कापूर सगल कटां का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोठ महला पंजवा हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूरख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा रहाओ तुम सब साजे साज निवाजे।

हो भला हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख बधाते, तुम राखो अपने बाला तुम निदान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एह हवाला, राख संतन कै पाछे सूरठ महला पंजवा घर दूजा, मात गर्भ में है आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारी, पावक सागर अथाह लहर में है।

तू दाता मांगन कौ सगली दान दे प्रभ पान हिन मह अवर हिन मह अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारी साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सूरठ महला पंजवां हम संतन की रेन प्यारी।

ताम है सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो आनंद मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर बिद जाने ता की कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ। अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दा मोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण अधारा। सोठ महला पंजवा मृतक कहो पायो तन सासा बिचरत आन मलाया। पशु प्रेत मुग्ध भये स्रोते हर नामा मुख गाया। पूरे गुर की देख वडाई ताकी कीमत कह ना जाई रहाओ। दुख सोग का ताहयो डेरा अंद मंगल बिसरामा। मन बांचत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा। इहां सुख आगे मुख उज्जल मिट गए आवन जाने। निरपौ भये हिरदय नाम वसिया अपने सतगुर कै मन पाणी। उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा। कहो नानक ताके पूर करम्मा जांका गुर चरनी मन लागा। सोठ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाई है। पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याई है। सिमरहो हर हर नाम परानी बिनसै काती दे अज्ञानी। रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई। राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई। हौ हौ करत बिहाय अवरदा जी को काम ना कीना। धावत धावत नह तृप्तास्या राम नाम नहीं चीना। साध विकार बिखै रस मातु संख खते कर फेरे। नानक की प्रपाहे बिनंती काट हो अवगुण मेरे। सोठ महला पंजवा गुण गाव हो पूर्ण अविनाशी। काम क्रोध बिख जारे महा बिखम अगन को सागर। साधु संग उधारे पूरा गुर मेट्यो परम अंधेरा। पज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ। हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई। जत कत पूर रहो परमेश्वर तत आवे कत जाई। जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला। नाम रतन जिन गुरमुख पाया ता की पूर्ण काला। काल कलेश मिटे दुख सगले काटी जम की पासा। कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भई बिगासा। सोठ महला पंजवा करन कराव नहार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी। सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी। मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस। अचरज पई बढ़ाई रहाओ गुर की शरण पए पै नास्ती। साची दरगाह मानी गुण गावत अराध नाम हर। आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत। संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने। जिन पूर्ण पैज सुवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे। जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभे अपना। अंत सेती घर आया सोठ महला पंजवा। प्रभ की शरण सगल भय लाथी दुख बिन से सुख पाया। दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया। प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला। गुण गावो रंग राता रहाओ सतगुर नाम निधान दिरडाया। चिंता सगल बिनासी
कर किरपा अपनो कर लीना मन वसिया अविनाशी तां को बिघन ना को लागे जो सतगुर अपने राखी चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस चाखी कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दास तां कै बलिहारे जिन पूर्ण पैज रखाई सूरठ महला पंजवां माया मोह मगन अंधियार है देवनहार ना जाने कियो पिंड साज जिन रचिया बाले अपनो कर माने मन मूड़े देख रहे हो प्रभ स्वामी जो किछ कर है सोई सोई जाने रह ना कछु ऐशानी रहाओ जिहवा स्वाद लोभ मद मातु उपजे अनक बेकारा बहुत जोन परमत दुख पाया हौ मैं बंधन के पारा दे कवाड़ अनक पड़ दे मह पर दारा संग फाके चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पड़ता तेरा ढाके दीन दयाल पूर्ण दुख भंजन तुम बिन ओट ना काई काड लेहो संसार सागर बह नानक प्रभ सरनाई सूरत महला पंजवां पार ब्रह्म हुआ सहाई कथा कीर्तन सुखदाई गुरपूरे की बाणी जप आनंद करहो नित प्राणी हर साचा सिमरहो पाई साध संग सदा सुख पाई है हर बिसरना कबहू।

कर्म परापत हुए, सूजन निर्मल थीवे, विघ्न बनासन सब दुख नासन, गुरचरणी मन लागा, गुण गावत अचुत अविनाशी, अन दिन हर रंग जागा, मन इच्छे से फल पाए, हर की कथा सुहेली, आदि अंत मद नानक को, सो प्रभु हुआ बेली, सूरठ महला पंजवा पंच पदा, बिन सै मोह मेरा अर तेरा, बिन सै अपनी तारी, संतो हो इहा बताव हो कारी, जित हूं मैं गर्भ नवारी रहाऊ, सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या, होवा सगल रे नारी, देखियो प्रभ जीओ अपने संगे, चूकै पीत परमहारी, औखद नाम निर्मल जल अमृत, पाईए गुरु द्वारी, कहो नानक जिस मस्तक लिखिया, इस गुर मिल रोग बिदारी, सोठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सगल बनस्पत मह बै संतर, सगल दूध मह किया, ऊच नीच मह जोत समानी, कट कट माध हो जिया, संतो हो कट कट रहे आसमाहे, पूर्ण पूर रहे हो सर्व मह, जल थलर मैया आहयो रहाओ, गुण निदान नानक जस गावे, सतगुर परम चकायो, सर्व निवासी सदा अलेपा, सब मह रहे आसमायु, सूरठ महला पंजवा, जा कै सिमरन होए आनंदा, बिनसै जन्म मरण पै दुखी, चार पदार्थ नव निद पावह, बहुर ना तृष्णा भुखी, जाको नाम लैत तू सुखी, सास सास त्याव हो ठाकुर कौ, मन तन जियरे मुखी रहाउ, शांत पावह होवह मन शीतल, अग्न ना अंतर तुकी, गुरु नानक को प्रभु दिखाया, जल थल त्रे पवन रुखी, सोठ महला पंजवा, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इनते आप छडाव हो, एहे पीतर ते इनको डार हो, आपन नित बलाव हो, अपनी बिद आप जनाव हो, हर जन मंगल गाव हो रहाओ, बिस्तर नाही कबहू ही एते, एहे बिद मन मह पाव हो, गुरपूरा भेटियो वड भागी, जन नानक कतह ना ताव हो, सूरठ महला पंजवा, जाकै सिमरन सब कछ पाई है, बिरथी काल ना जाई, तिस प्रभ त्याग अवर कत राचो हो, जो सब मह रहे आसमाई, हर हर सिमरहो संत गोपाला, साध संग मिल नाम त्याव हो, पूर्ण होवे काला रहाउ, सार समालै नित प्रतपालै, प्रेम सहत गल लावै, कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे पावै, सूरठ महला पंजवा, अविनाशी जीयन को दाता, सिमरत सब मल खोई, गुण निधान भगतन कौ बरतन, बिरला पावै कोई, मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पया सुख पाई है, बहुड़ दुख ना होई रहाओ, वड भागी साध संग प्राप्त, तिन भेटत दुरमत खोई, तिन की धूर नानक दास बांचै, जिन हर नाम हृदय परोई, सूरठ महला पंजवा, जन्म जन्म के दुख निवारै, सूका मन साधारै, दर्शन भेटत होत निहाला, हर का नाम बीचारै, मेरा बैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटै जम की फंदा रहाउ, समरथ पुरख पूर्ण बेधाते, आपे करनै हारा, अपना दास हर आप उभारिया, नानक नाम आधारा।
चौथ महला पंजवा अंतर की गत तुम ही जानी तुझ ही पाहे नबेरो बख्श लहो साहिब प्रभ अपने।

सुख बाहर कौन सुखा, प्रभ अपने भय दयाला, नानक बिघन ना लागे को, मेरा प्रभ हुआ कृपाला, तोरठ महला पंजवा, साधु संग भया मन उद्दम, नाम रतन जस गाई, मिट गई चिंता सिमर अनंता, सागर तरिया पाई, हृदय हर के चरण बसाई, सुख पाया सहज तुन उपजी, रोगा घाण मटाई रहा, क्या गुण तेरे आत बखाना, कीमत कहन ना जाई, नानक भगत पय अबनासी, अपना प्रभ भया सहाई, सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे, प्रभ अपने

अपने खसम भरोसा कहो नानक गुर पूरा भेट्यो मिट्यो सगल अंदेसा चौठ महला पंजवां सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया मेरा गुर पूरा सुखदाता करन कारण समरथ स्वामी पूर्ण पुरख बधाता रहाओ आनंद बनोद मंगल गुण गावो गुर नानक पए दयाला जय जयकार पए जग भीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला चौठ महला पंजवां अमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण साथ दे राखी करे अपने

0: गुरु रूप सत संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु साहिब जी इको अंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जाप आदि सच जुगादि सच

परम पिता अकाल पुरख महाराज जी बड़ी मेहर होई के डुबदे होए संसार दे उपर कृपा कीती। सतगुरु ने सब तो पहला अवतार धार के सतगुर ते संसार ते कृपा कीती। सतगुर ने सब तो वड्डी कृपा ए कीती भई संसार अंदर अवतरे प्रगट हो। अवतार लेना संसार दे लोगां वास्ते शायद कोई वड्डी गल नहीं थी, क्योंकि समय समय अनुसार पैगंबर अवतार मुनि सारे दे सारे संसार अंदर अवतार लेंदे रहे। तेई अवतार हिंदू मत दे, इन्हां ने अवतार लिया संसार दे अंदर सतयुग दे त्रेता दे द्वापर दे कलयुग दे जिन्ने अवतार होए सारिया ने अवतार लिया, पर शायद अवतार लैण दे नाल संसार दी प्यास संसार दी इच्छा संसार दी आकांक्षा संसार दी तमन्ना ना पूरी होई। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की ऐसी मेहर होई भई 16 कला संपूर्ण फलिया अनंत कला हो ठाकुर चढ़िया। अनंत कला 16 कला का संपूर्ण अवतार मनिया कृष्ण नु, राम नु 14 कला संपन्न मनिया, अनंत कला का ठाकुर अनंत कला अनंत शक्तियां लैके संसार अंदर प्रगट होने वाला कलयुग का अवतारी पिता गुरु नानक साहब जी दे नाम दे नाल जानिया जान लगा ते पंचम ज्योत दे अंदर आके संग्रहण किया श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज उन्हां दा पवित्र वाक है भई पूरा थाट बनाया पूरा अपने आप दी वड्याई नहीं भई अर्जन देव ने एक गुरु ग्रंथ साहब दा संग्रहण किया। अर्जन देव ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की भीड़ नु संपूर्ण किया, अपने आप दी मानता वड्याई प्रभुता नहीं है, अपने आप नु ते दास ही कुहारे ने इको गल कह दिती पूरा थाट बनाया पूरा। किन्ने बनाया? पूरे ने। वेखो एक समाना इस पर पंचमें साजे नाम की वड्याई मत को धरो गुमाना सतगुर की जिसनु मत आवे। महाराज गरीब नवाज सच्चे पातशाह फिर पुकारन हार होए ना बिने करन हार होए ना जेड़े सारे जगत नु एक बिने कर रहे ने भाई सतगुर की जिसनु मत आवे संसार दे लोगो जिसनु सतगुर की मत आ गई ना जेड़ा गुरु की मत ते चल गया वो फिर सतगुर माहे समाना। सतगुर विच समा जांदा है, सतगुर उस दे विच समा जांदा है। फिर कबीर साहब जी दे वाकां अनुसार वो कहंदे ने भी संत राम में भेद किछ नाही, ना संत अंदर ते ना राम अंदर भेद कोई नहीं। अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिल है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय एक हो गए। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी उस परिपूर्ण परमात्मा की शोभा करदिया कहा हे अकाल पुरख महाराज तेरी सिफ सलाह दे अंदर जुड़दिया संसार नु जदो वाक कहे ना ते कहन लगे भई ए बिद करत तपस्या भयो द्वैते एक रूप, द्वैते एक रूप हो गए। दूजा रूप कोई है ना एदा मतलब सानू नजर नहीं आंदा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज नु नजर आ रहा है, गुरु अर्जन साहब नु नजर आ रहा है, गुरु नानक देव जी महाराज नु नजर आ रहा है, उन्हां नु दूजा रूप नजर आंदा है। द्वैते एक रूप हो गयो किस तरह भाई जिवें धन फिर ए ना आकीए बहन इकट्ठे होए एक ज्योत दोए मूर्ति, जिवें संसार दे अंदर पति ते पत्नी दा रिश्ता ज्योत एक हो जांदी मूर्तां दो नजर आउंदियां। इसे तरह संसार दे अंदर जदों रब नू जपीदा ना जो सतगुर की जिसनू मत आवे सो सतगुर माहे समाना सतगुर विच समा जांदा है, जिनू सतगुर की मत आ जाए और सतगुर विच समा। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने बड़ा सुंदर हवाला दिता है, कहिंदे

रंग हमारे पास जियो। कितना वजन है इस पंक्ति के अंदर, जरा सोचो कि सतगुरु ने की भेद रखे। एक बेबल होई होई जीव रूप स्त्री सतगुरु के चरणा च अरदास करती है, सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज ने इसका नक्शा बड़ा सुंदर खिंचया है। पंक्तियां दोनों का डिस्टेंस है भावें, पर फासला जरूर है, पर अंत जड़ा है ना, शब्द का प्यार, शब्द की मिलावट, शब्द का संग्रह गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने इथे आके किया। जी प्राण सुख दात्या निमख निमख बलहार जियो, क्योंकि दयुग साई मीतला तू संग हमारे पास। एदा मतलब यह होया भाई सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने जेड़े शब्द की पंक्ति लिखी है ना, इसका भाव बड़ा गहरा है। भाई हो अकाल पुरख महाराज, हे निरंकार, हे प्यारे पति गुरुदेव, हे मालिक, हे स्वामी, हे मेरे प्यारे महबूब, दुनिया के रचनहार दाता, तू साडे संग रहिंदा सै, साडे नाल जीउंदा सै, साडे नाल नाल चलदा सै, साडे घर दे अंदर तेरा निवास सी, तेरा साडे घर दे अंदर वासा सी, साडे सिर उपर तेरा हथ सी। गरीब नवाज सच्चे पातशाह पता नहीं की कारण होया तू साथों विछड़ गया, तू साडे घर विचों चला गया सतगुरा, तू साडे घर विच नहीं रहा, तेरा हथ साडे सिर उपर नहीं रहा, मेहरबान गुसाई तेरी कृपा साडे घर अंदर नहीं रही। बड़ा समा हो गया दर्शन कीते हैं, तू तो साडे नाल रहिंदा सैं, कोई गल ते दस, नाराज क्यों होए? नाराजगी है कुल दस, केड़ी नाराजगी है, की भुल होई है, की गलती होई है। जीव रूप स्त्री भी अपने पति दे चरणा च अरदास करदी ना, महाराज स्वामी मालिक प्यारे पति गुरुदेव जीओ, की भुल होई है, नाराज हो गए, मुंह फेर के बैठे होए, की गल होई, करवट भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी, हाँ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। किड्डी बेबलता की अवस्था है, किड्डी विछोड़े की अवस्था है, किड्डी बैराग की अवस्था है। कहंदे कलवत ते सिर दे उपर धरिया जावे, शरीर आरे नाल दो फाड़ हो जावे, मैनू मंजूर है, पर हे प्यारे पति, हे प्यारे गुरुदेव, हे प्यारे मालिक, तेरी पिठ तेरा मुंह परले पासे सानू परवान में, करवट भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी, हाँ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे। तू मैनू मारना तो उदा ही गला घुट के मार दे ना, मैनू करवट दे के, मैनू पिठ दे के क्यों मार रहे हैं, क्यों परा नू मुंह करके मैनू मार रहे हैं, क्यों नाराज होके मार रहे हैं। सतगुरा नाराज ना हो, तू संग हमारे बास जियो, साडे संग रह, साडे घर अंदर रह, तेरी सेवा करिए, तेरे चरणा की पूजा करिए, तेरे चरणा नू चुमिए, तेरे चरणा नू दोनों वक्त पखारिए दाता। पर गल ते दस ना, नाराज क्यों होया, गया क्यों है घरों? जी प्राण सुख दात्या निमख निमख बलहार, ओ प्राण दे मालक पति जियो देन वाले दाता, सिर तों ते एक एक खिन मारने जाने आ, दिन दे अंदर लखां वार नी, करोड़ां वार नी, जितने शरीर दे रोम ने बार बार तैथों बलहार जाने आ। कारण दा रीजन दा की है? शब्द का गहरा भाव यह, तुद बिन घड़ी ना जीव ना त्रिग रह ना संसार, कोई प्यारा यार पिछड़ जावे, रुस जावे, पुत्र प्यो को रुस जावे, मां पासों रुस जावे, भैन भरावां नाल रुस जावे, प्यारा दोस्त दोस्त नाल रुस जावे, जिंदगी जड़ी है योग योग हो जाती है, हालत बेहबल हो जाती है, मच्छी दे तरह तड़पन लगता है, सिख गुरु नाल विछड़ जावे ते ओ कहंदा त्रिग रहना संसार, कुछ बिन घड़ी ना जीवना त्रिग रहना संसार, मौत दे दे संसार च रहना प्रमाण नहीं। प्यार दी हालत सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने
वर्णन कीती है। आप जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूप जिन्हां दी सेवा आप जी ने अपने हथी बुधवार कीती है ना, कितनी उम्मीद

सब रूपन में सब पूपन माही, जीवन में जल में थल में सब रूपन में सब पूपन माही, सूरज में सस में नब में जय हे रो तहां चित लाए तहाही, पावक में अर्पण हूँ मैं पृथ्वी तल में सो कहां न जाई, जप कहे सब

किस्मत एक जोत है न काट है न बड है न काट बड होता है। जमीन जमान के किस्मत एक जोत है न काट है न बड है न काट बड होता है। नहन है न बन है समान रूप जानिए मकीर अमकान अप्रमान तेज मानिए।

हर जन्म मरण बहीन दस चार चार परवीन, हर जन्म मरण बहीन दस चार चार परवीन, अकलंक रूप अपार अनछेज तेज अपार, अकाल है अकाल है ख्याल है अखंड है न दोख है न दंड है न मृत है न पंड है, अकाल है अकाल है ख्याल

कोट पराध हमारे खंड अनक विधि समझाव हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन दर्दर खाव तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सहेले राख हो रखनहार दयाला नानक करके गो।

सर्व गोपन काल जत्र तत्र विराजे अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आदि पुरुष उदार मूर्त।

जात जा कर जन्म मरण विहीन चकर बकर फिर चतर जा कर मान ही प्रदीन लोक जौदान के विषय जग जापे के व्याप आद देवन आद मूर्त।

ब्रह्मांड से है, कलखंड से है, परते पर है, करुणा कर है, जप जप है, सपा सप है, अकृता कृत है, अमृत अमृत है, अमृत अमृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, करुणी कृत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृत अमृत है, अजपा कृत है, अमृत अमृत है, नरनायक है, कलकायक है, विश्वंबर है, करणालय है, नृप नायक है, सर्वपायक है, पव पंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जपजापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है।

जीवन अकर्मंग अकर्मंग गंजे लेखे पुजंग प्रयात शांत नमासल प्रणामे समासल प्रणाशे।

स्वर्ग सभी जग श्री भगवान को फिर न पायो। पाठ चाहिए दसवीं कभी बात बेनती चाहो

विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग, विस्माद नागे फिर है जन, विस्माद पौन, विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेडे विडाणी, विस्माद धरती, विस्माद खानी, विस्माद साध लगह प्राणी, विस्माद संजोग, विस्माद विजोग, विस्माद भुख, विस्माद हो, विस्माद सिफ, विस्माद सालाह, विस्माद

कोलू त्रिका चक्की चक तलवारों लै बहुत अनंत लाटू मधानिया अनुगा पंखी पौधे लैना सा सुए चाड़ पाइए जंत नानक पौद्या गंत नंत बंदर बन पाए सोए पै कितन चै सब कोई

लक्ष्मी किया चंगे लखना प्रवान लख प्रतीता सह जो विवान लख संग्राम रण में छिटे प्राण लख सुती लग्या।

नानक तग न टुटई जे तग होवै जोर। महला पहला नाय मने पत जाय साल आई ससूत दरगह अंदर पाई है।

नानक उन संग मोहे उधार सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ नाम बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन न।

रंग प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन दिन सह दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी प्रभ कै सिमरन होए सो पहला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से

दर्शना प्रभु कौ सिमरह से धनवंते प्रभु कौ सिमरह से पतवंते प्रभु कौ सिमरह से जन परवान प्रभु कौ सिमरह से पुरख प्रधान प्रभु कौ सिमरह से वे मोहताजे प्रभु कौ सिमरह से सर्व के राजे प्रभु कौ सिमरह से सुखवासी प्रभु कौ सिमरह सदा।

सिमरन पूरे पहाग प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कबहू ना चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन निहचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार सिमरह से जान जिनको प्रभ मया नानक तिन जान शरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाय हर सिमरन कर

हूं कुंत जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन वह आप निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन।

राष्ट्रपदी जय मात पिता सुत मीतना पहाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जय महाभयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जह मुश्किल होवे अत पहारी हर को नाम खिनमा है उदाहरी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहो मन मेरे नानक पावहो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख ना बुझावै हर का नाम जपत आधावै जिह मार्ग इहो जात इकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख बाहे नाम जब तह पार पराहे अनक बिघन जह आए संहार हर का नाम तत्काल उधार अनक जोन जन्म मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मल कब हुन धोवे हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जप हो मन रंग नानक पाई है सा

जल तो बहुते अनीत शुद्ध कहाँ होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उधरे पतत बहुमूच बहुत सियानप जमका बहु व्यापय अनेक जतन कर कृष्ण ना त्रापय पेख अनेक अगन नहीं बुझय कोट उपाव दरगाह नहीं छिझय छूट सनाही ऊब पयाल मोह व्यापह माया जाल अवर करतूत सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे।

अपनी गत मित जन हो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उत्तत तुमते होए नानक अवर ना जान से कोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूलते कम दृष्टानी जिन्तु साज स्वार श्रृंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझ प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साक्षैन।

पर होवत जान अनेत। बिरख की छाया स्यों रंग लावै, ओह बिन सह ओ मन पछतावै। जो दिसै सो चालन हार, लपट रहयो तह अंध अंधार।

बृहस्पति यह प्रसाद सत्य ही अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे यह प्रसाद सुगंधत तन लाव है तिस कौ सिमृत परम गत पाव है यह प्रसाद बस है सुख मंदर तिसह त्याए सदा मन अंदर यह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना

जिह प्रसाद बोल है अमृत रसना, जिह प्रसाद सुख सहज बसना, जिह प्रसाद हस्त कर चल है, जिह प्रसाद संपूर्ण फल है, जिह प्रसाद परम गत पाव है, जिह प्रसाद सुख सहज समान है, ऐसा प्रत्याग

जनम साध कै संग नहीं कछ काल दर्शन पेट तो होत निहाल साध कै संग कलूख तहरै साध कै संग नरक पर हरै।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई, ब्रह्म ज्ञानी कौ बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी कौ खोज है महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाखियर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाखियर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने।

मन से तरय इंद्री जित पंच दोष से रहत नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हुए निःकर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बांछय केवल भगत कीर्तन संगराचय मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानक ओहो वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनस सगला भ्रम कर पूजय सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पय विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती।

नानक ओ पुरख कहिया जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जित जित कर राखै तैसा तिन नाऊ आपे करन करावन जोग प्रभ पहवै सोई फुन होग पसरियो आप होए अंत तरंग।

उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बै संतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत धारै, नानक जिस जिस पहावै।

तन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् कह देते सदा निहार है एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीव है अमर पहे सद सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है।

खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसै।

जिसका दिया रहे अघाए बहरना तृष्णा लाग आए मारे राख को आप मानुख कै कृष्णा ही हाथ जिसका हुक्म बूझ सुख होए जिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन ना लाग कोए उस्तत

है, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किससे डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत।

श्रेष्ठ आपे आप सकल महे आप अनेक जुगत रथ थापो थाप अविनाशी नाही किस खंड धारण धार रहो ब्रह्मांड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सकल संसार उधरै तिनमंत प्रभ के सेवक सकल उदाहरण प्रभ

पाई दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तुम सहचितार जो कछ करे सोई सुख मान फूला काहे फिर है अजान कौन बस्त आई तेरा संग लपट रहे रसलो भी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पत से ती कर जाहे जिस बखर कौलैन।

करकश न जनावे, हर हर नाम हृदय सत ध्यावे, मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए निकामी, तिस को होत प्राप्त स्वामी।

ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम सहस्यानप लया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए सफल दर्शन पेख पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे सुनकर वचन करन आघाने।

ना पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किनै ना पाई, अनेक भगत बंदन नित कर है, चरण कमल हृदय सिमर है।

अगन महरा खै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुरपुरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करहो इहो काम आम त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जपहो अवरह नाम जपाव हो भगत पहाए तरिया संसार बिन भगती तन होसी शार सर्व कल्याण सुख निज नाम।

अष्टपदी। जब अकार एहु कछना दृष्टेता, पापुन तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समाध, तब बैर विरोध किस संग कुमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरख सोग कहो किस है व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्तीजा, नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक है हरागमा पार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत तहै, तब कवन निडार कवन कत डरै। आपन चलत आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन भांदे। आपने आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा। जह निर्मल पुरुख पुरुख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश, तह शल सिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किस है भूख।

अष्टपदीम आप कथे आप सुनने हार आप है एक आप विस्तार जात पावे तो सृष्टि उपाय अपने पहाने ले समाए तुम ते पिन नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जा कहो प्रभ जियो आप बुझाए सच।

काल, सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप, प्रतपाले जीअन बहु भांत, जो जो रचियो सोत सह ध्यात, जिस भाव

उत्कृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बस

अष्टपदी संत सांग अंतर प्रभ दीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिगरी एक कटमा है अनकरंग नन्हा दृष्टा है नौ निधि अमृत प्रभ का नाम देहि महेश का विश्राम सुन समाध।

कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्व भूत आप वरतारा, सर्व नैन आप देखन हारा।

रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद बाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल।

बलवंद खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर के हली गुर सिखा के मुख उजले मन मुख किए पराली पहे कबूल खसम नाल जा काल मर्दी काली।

आओ सारे रल के कुछ समा गुरबानी की करिए। कोई रसना वाणी ना दी रवे, सारे वीणी सारी भैणा। मौसम बड़ा सोहना है, सुहावना है, ठंड ना लगे, त्रेल ना पे। प्रबंधकां ने उपर शमियाने लाए, दिक्कत ना हो। सो बड़ा सोहना वैदर भी है, ते आओ रल के समझण की कोशिश करिए। कुछ नुकते बड़े जरूरी हल हैं, जिहड़े पढ़े लिखे बच्चे है वह समझते हैं कि फॉर्मूला समझ च आ जाए सारे सवाल हल हो जाते। जिंदगी के बड़े फॉर्मूले है जिहड़े सानू समझने चाहिए, जो गुरु साहब ने समझाए है। थ्योरिकल से बंदा आपे ही समझ आता है, एक ही फॉर्मूला समझ जाए। ता करके आप कोशिश करिए अज का ते कल का दो दिन अपने कोल हन। कल की हाजरी भाई सुरेंद्र सिंह जी भर के गए है, एक दीवान उन्हां दा सी, दो दिन मेरी हाजरी सी, अज साडा पहला दीवान है। ते आओ रल के सारे प्रबंधकां दा उद्यम कीता, इन्हां दी सेवा कीती, इन्हां दी मेहनत कीती। साडा आउणा तुहाडा आउणा सारिआं दा तां सफल है। जो सुनदे हाँ उन्हों समझ सकीए, जिन्हों जिहदी समझ लग जाए उन्हों अपने जीवन विच लागू करिए। सुनना समझना ते जीवन विच लागू करना ये बड़ा लाजमी है। सारे वीर बारी बारी नमस्कार करके पैना, जिथे जिथे जगह मेरे पिछे वह नालों इधरले पासे भी जगह जिथे जिथे है, सारे वीर सजो सजो रल के आप कुछ समा गुरमत को समझण की कोशिश करिए। आओ भगत रविदास जी तो अरदास करनी सीखिए, उस तो बाद उद्यम करना सीखिए। सारे राज का

मौत एक अटल सच्चाई है, कोई सज्जन वेड़े सिर ना आवे, ये हो सकता कोई रिश्तेदार समय सिर ना पहुंचे, पर जेरी मौत ये अख का लहना इधर उधर नहीं होने दी। ऐसी सज्जन किसी ने बड़ी अटल सच्चाई आखी है, आंदे कोई साधु महात्मा तप कर रहा थी, ते चोर दाल है के दाल आके साधु का पूरा चुके ले गया, और साधु उठा तुरिया जा रहा पेनू अगो कोई बंदा तुरिया आता सी, उन्हें आख्या भी तू सियाणा बंदा मैनू दस भी पिंड दियां मड़ियां किधर, उन्हें आख्या इधर ही आ बाबा जी तो तू तुरिया जाना, उन्हें आख्या पर तू मड़ियां क्यों पुछदा, आंदा चोर मेरा कंबल चुक के लै गया, उन्हें आख्या बाबा चोर से मैं इधर जाना वेखिया पर तू मड़ियां क्यों पुछदा, आंदा आखिर इतने आए जाना ते कंबल इन्हां ने टकरा के नहीं गलदा, मौत एक अटल सच्चाई है, सरफे सरफे सदा सदा ऐवें गई रहाए, नानक किस नूं आखिए मैं पुछिया ही लै जाए, पता नहीं कि वेले किस समय ये सदा पत्थर आ जाना, हम आदमी है एक जमीन मोहलत मोहत न जाना। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह ने मरदानी नूं पुछिया सी, मरदानिया वो मौत नूं कितनी दूर समझ आई, आंदा महाराज अज का सूरज वेख्या कल का पता नहीं देखना कि नहीं देखना, वो मरदानिया मौत एडी दूर समझी बैठा, मौत एडी दूर नहीं गई। भाई बाला जी तुसीं दसो, उन्हें आख्या महाराज हुण की घड़ी वेखी आ, अगली पता नहीं वेखनी कि नहीं वेखनी, सतगुरु कहने लगे मरदानिया मौत बालिया मौत को तू ही बड़ी दूर समझे, मौत एडी दूर नहीं, मौत के तेरे हाथों पैरों नेड़े आ, महाराज आप कृपा करके दसो। गुरु नानक पातशाह के पावन बचना, हम आदमी है एक दमी मोहलत मोहत न जाना, हाँ एक गेट से चार माह बाद होगा, पता नहीं वापस जाना कि नहीं जाना, इन्नी क बंदे की मल्याल है, और शेरे पंजाब इन्हें मार के मारने वाला सदा की नींद सौ गया, जिस वे शेरे पंजाब की चिखा मच रही है, आंदे मातम छाया आया, लोग बड़े रोया, इधर एक पंजाब का बड़ा सदाता सिंह पीर बड़ा सियाना करी है, उनका आखरे महाराजा की चिखा नहीं मच रही है, पंजाब की किस्मत फर रही है, सुनिए और चार लैं वधाता सिंह पीर दिया लिखिया तो सामने क्यों जाना नहीं।

महारा देवी आत्मा की तपदी होड़ी खबर सड़के शेर दी रू कपदी होड़ी खबर सड़के शेर दी रू कपदी होड़ी महाराणी जिंदा ने अपने पुत्र नूं लांत पाई ना ते मां दे कहदा पुत्र उते इन्ना वड्डा असर होया। उहने आख्या माता तेरा पति ते मेरा पिता दुनिया तो तुर गया ओ वापस नहीं आ सकदा। मेरे अज ताक नहीं मैं तेरा गया होया राज वापस लैवां पर माता मैं आज तेरे ना पक्का वादा करदा कि मैं गुरु नानक साहब की सिक्खी तेरे घर च लाऊंगा। गुरु के सिखो इन मानदे आ सोख उपदेश सिरदे बसाओ मिलेगा की मन इच्छे नानक फल पाओ। जेड़ा उपदेश सुन के गुरु का उपदेश सुन के वड्डियां का उपदेश सुन के सिरदे च वसारे ना मुंह मंगियां मुरादा गुरु के दर तो मिलदियां। मैं कल वीर मेरे टकसाली भाई मलकीत सिंह जी मैं उसके घर विखे गया बड़ा सुंदर पातशाह ने घर दसिया वेली और तगड़ी है। मैं क्या तेन वेली बड़ी तगड़ी थी है पिछे कमरे बनाए आना भी इतने मुंडिया का मामा रहा। मैं जो कमरे च गया मैं क्या मामा कहना कई फिर फोटो लगी फिर भी मुंडिया से दाड़ी मैं कतरी की आंदा मुंडिया का मामा मैं क्या तू चढ़ती कला का किस्सा तेरे को आंदा हम तू फोटो तेन में विखाऊंगा तो साढ़े सामने बैठा मेरा वीर इन्होंने भाई दलजीत सिंह जी किड़ा किड़ा दाड़ा और उस गुरु के सिख का वचन मन के इन्हें सिखी को बनाया। सतगुरु कृपा करे जदों कोई गुरमती राज सिख चढ़ती कला होगी ना उदों उन्हां दा असर दूजां ते जरूर होएगा। मैं इटली विच गया एक घर में लंगर छकन गया तो बाबा जी जब मैं लंगर छकन लगा तो एक मुंडा थोड़ी थोड़ी दाढ़ी उतर रही थी बाबा ने पहले कटाई थी ते मैं क्या भी तू किस तरह और पहले ही दस्या कि यह मेरा वीर वा ये इंडिया तो आया ये क्लीन शेव सी ते हुण इहने दाढ़ी रखी है ते अपने भाइये आंदा भी मैनू काम दवा। उन्हें आख्या पहले तेरा दाड़ा भरपूर हो लैन दे फिर तू खंडे बाटे का अमर छकी ते तेरे काम बदले में फिर सोचूंगा। कहो कहो जे सिख गुरु के प्यारे रह गया छे महीने वो सिख नू काम नहीं मिले छे महीने के लिए जाके ते उन्हें बड़िया लोगों ने प्रेरणा दी और दाढ़ी कटा दे तेन काम मिल जूगा। वो ट्राला चलाना सी ड्राइवर सी उन्हें आख्या सिखी केसों सौथा न लिदेगी कम मिले या ना मिले ते जाप साहब का अभ्यासी सी ते 25-25 पाठ और जपजी साहब ने करया जाप साहब ने करया करदा सी कान सी भी उहनू एक बोली नहीं सी उहनू दी कान नूं बोलनी आउंदी। उहने उहदे नूं नाल दे संगियां ने दस्सिया उहने आख्या ने एक दिन गुरू दे चरणां च अरदास कीती महाराज तेरे घर विच की घाटा जे मैनूं इहनां दी बोलनी बोली आ जाए ते मैनूं नौकरी मिल जाणी आ। आंदे सानूं ते एक बोली आउंदी आ तेनूं तीन बोलियां सुनियां बोलनियां आ गईआं उहनूं 1.5 लाख रुपया तनखाह ए गुरु के सिख है गया। इस तरह महाराणी जिंदा का अपने उस बच्चे उत्ते असर होया उन्हें आख्या अज तो माता जरा सिर से वधिया जाएगा पर जी किस सिखी है ना वो गुरु की किरसा से स्वार्था नाल जिमेगी जिस तरह अपनी मां के नाल राणी जिंदा के नाल उन्हें केस रखन का पक्का प्रण किया। उन्होंने लहरों नौजवानों तुम भी सुनो तो इस कविता सुन के जे साडे मन विच कोई तब्दीली नहीं आई ते साडे तो वध वध किस्मत बंदा दुनिया विच होर कोई नहीं हो सकदा। कविता बड़ी काबले वाले ध्यान सुनो सच वाद

घटना सुनी। एक नौजवान नौकरी करने गया, 6 महीने गुरु की सिखी देते रहा, मतिया सिख हुंदा आया, माया दे लोभ लालच फस के काम नहीं सी मिलदा। नाल दे सनी आख्या दाड़ी कतरा दे सिर कतरा दे तेनू सवेरे काम आसूरा मैं मीट पैट दे फैक्ट्री चलवा दूंगा। गुरमतिया सिख हुंदा आया, पैट दे उठ गया, काम भी मिल गया। 10 दिन काम कीता ते 11वें दिन सुता ही उठया। ओदी लोथ मुड़के उथों दिया संगियां साथियां ने पैसे पा के इंडिया भेजी। इस करके गुरु के प्यारो सतगुरु कृपा करे, सिखा जदों तू सवेरे उठ के अपना शीशित मुंह तके ना, तेरे मुंह ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज का बख्शा दारा होवे, ओ तेरे सिर ते केस होण, तेरे केसां च कंघा होवे, तेरे सिर उत्ते सुंदर दस्तार होवे, तेरे दौरे उत्ते सरबरों का तड़ा होवे, तेरी ढाक उत्ते साहबां दी बख्शी तलवार होवे, और तेरे पैर जप्पां दी निशानी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का बख्शा पिछैड़ा होवे, ते सवास सवास कलगियां वाला बैठा साडे हिरदे विच नजर आवे, फिर खालसे की तकदीर मुकम्मल होंदी है। ये दास सानू गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन चरणों को सारिया संगतों को मिले, उन्होंने फुलों की माफी कोटान कोट धनबाद गुरु ग्रंथ साहब जी का, आई गुरसिख संगतों का सतगुरु कृपा कर फतेह गढ़ के बुलाओ, आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

कबीर साचा सतगुर मैं मिलया, कबीर साचा सतगुर मैं मिलया। मिलदा हरेक नू ते ध्यान रखे, जदों सानू मिले असी की करना, शायद भावे रोज ही मिलता हो पर पहचानन वाली अख नहीं। कबीर साचा सतगुर

गुर सागर रतनी पर फूरे अमृत संत चुगे नहीं दूर, हर रस चोग चुगे तब भावे चरवर में हंस प्राण पत पावे, चरवर में हंस

फिर बोड़ न चलिया। हरी दे नाम दा रतन पदार्थ जिसनूं शायद संसार ने सारिया नालों हल्के मुल दा जाने, पर जिन्हां ने इस दी कीमत जानी वो फिर कहन लग संसार दे विच अमोल एक है, बहुमुली कीमत है ते परमात्मा दे नाम दी। नाम तो सारा संसार थले है। हजूर गरीब नवाज साहब गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह दा कहंदे हन, भगती श्रोमणी है संसार दे विच, भगत श्रोमण जगत में भगत रहे लिवतार। लिव ला के समाधि ला के परमात्मा दी भगती दे विच जीवन लाना बड़ा औखा है, बहुत औखा। साहब गुरु रामदास महाराज पातशाह कहंदे मैनू रतन दा पदार्थ मिल गया, रतना दी खान मिल गई है। ते रतना दी खान मिली कित्थों? कहंदे साहब गुरु अमरदास महाराज जी दे चरणा च, धन धन गुरु अमरदास महाराज जी दे पावन चरणा चो रतना दी पदार्थां दी एक खान मिल गई। मान सरोवर सतगुर दे चरण हन जिन्हां दे विच अणगिनत रतन पदार्थ छुपे हुए ने, ते जीवन दे अंदर ए रतन पदार्थ आ जान, रतन आ जाए। ते सतगुरु गरीब नवाज कहंदे इस दे नाल दी कीमत है ही नहीं। हजूर पातशाह कहंदे मैं अपने प्यो दादे दे खजाने नूं खोल के वेखे। गुरु अर्जन साहब महाराज कहंदे प्यो दादे दे खजाने नूं खोल के वेखे। दादा गुरु नानक साहब महाराज, धन गुरु अकाल पुरख महाराज, परिपूर्ण परमात्मा, इस दे खजाने नूं लियाउण वाले जगत गुरु दे पावन शब्दां नूं लभ लभ के पड़चोलता कर करके लभ के वेखिया। ते फिर जदों मिलिया संसार दे अंदर अज्ञानता दा अंधेरा दूर हो गया। कहीं पुरश ओ है जिस पास नाम दी वर्खा हो जांदी, जिस नूं नाम दी कणी मिल जांदी। ऐसा भाई वीर सिंह ने बड़ी सुंदर गल लिखी, गुरकलगीधर पातशाह जी दे चरणां दे विच इक बिणे करदे हां। कहंदे हे पातशाह, तेरे पास ते अमृत दा लबा लब भरिया होया सरोवर, तेरे पास अमृत दे बदल हन, अणगिनत बदल ने, जिस पासे वरजन सरसार कर देना संसार नूं, पर तेरे चरणां दे विच इक बिणे करना, जिहड़ी तेरे हथ विच सुराही फड़ी होई है, इस सुराही विचों इक बूंद दे दे, केवल इक बूंद अमृत दी, इक बूंद बस, इक बूंद जीवन नूं तब्दील करके रख दिंदी। इक चलकारा ही जीवन दा, गुरु दी अमृत दृष्टि दा इक चलकारा ही जीवन नूं तब्दील करके रख दिंदा। सतगुर दे मस्तक दी रोशनी ही मनमुख ताईं गुरमुख बना दिंदी है। ते भाई साहब कहंदे दे इक बूंद सराहियो सानू इको ही दे साईं, हे मेरे साईं अकाल पुरख। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनी सुराही दे विचों बख्शिश करके इक बूंद दे दे, अमृत दी इक बूंद दे दे, हे इक बूंद सराहियो सानू इको ही दे साईं, जे इक नहीं देनी ते इक नालो अद्धी दे दे, अद्धी नालो अद्धी दे दे, ते इक बूंद सराहियो सानू इको ही दे साईं, अद्धी अत पचद्धी दे दे, निक्की होर गुसाई इक किणका जिहा ही मार दे, छट्टा ही मार दे। देखो अमृत दी सार सोई जाने जो अमृत का व्यापारी जी, अमृत दा व्यापार करन वाले भाई साहब भाई वीर सिंह कहंदे इक बूंद दे छट्टे दी किणके दी की कीमत है। वह भी जे गिर जावे ता जीवन जिहड़ा है तब्दील हो जांदा है। ऐसे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी दे पावन चरणा दे विचों साहब गुरु अर्जन देव महाराज फरियाद करते ने, उस गुरु दे चरणा दे विच भट्टा ने फरमान किया, भट्टा के सवैया दे अंदर कहंदे जेड़े अमृत रूपी बाणी नूं श्रद्धा दे नाल पढ़दे ने,

जपे करे बचत चाओ आनंद नित मंगल गुरदर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा।